0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा

नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली

0: सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर

0: पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
4: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government says there'll be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of amount transferred. Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग मुंबई। 107.1 एफएम रेनबो से जुड़े सभी लिसनर्स को मेरा यानी आरजे अनूप का नमस्कार। और दोस्तों, जैसा अनूप की प्रथा है, स्वागत मैं करूंगा आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। दोस्तों, मुंबई की हवा बदल गई है। एक तरफ ढोल ताशों की गूंज, तो चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे, और ऊपर से ना हमारी मुंबईया बारिश की हो चुकी है वापसी। ऐसा लग रहा है कि मानो बप्पा का स्वागत करने के लिए ना बादलों ने भी अपनी पूरी पलटन उतार दी है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो धूप छाव के बीच या झमाझम बारिश और फिर इस बारिश में बप्पा का आगमन, कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है, पर मज़ा है इस कॉम्बिनेशन का। तो अगले कुछ मिनटों में दोस्तों, हम महसूस करेंगे मुंबई की असली स्पिरिट और पारंपरिक परिधानों, यानी हम जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस कहते हैं, उसकी चमक और हमारी लोकल ट्रेनों

के बिना मुंबई की बात करना तो बहुत ही अधूरा होगा ना दोस्तों। तो कुछ बात करेंगे हम लोकल ट्रेन के प्यारे प्यारे किस्सों की भी, तो बने रहिए मेरे साथ सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

जी हाँ, आ गए हैं हमारे सबके चहीते मुंबई में, बप्पा पूरे भारत में जिनकी धूम मची हुई है अभी। और जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ श्रोतागण जो हमसे जुड़ चुके हैं। पुणे से प्रमोद कारखाने और अमरावती से पंकज महोट जी, प्रणव शिंदे जी, थाने कलवा से वंदना सूर्यवंशी, शौर्य सूर्यवंशी और ओजस्वी सूर्यवंशी। दोस्तों, जब आप हम मुंबई की गणपति के उत्सव की बात करते हैं ना, तो मुंबई स्पिरिट कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, वो एक फीलिंग बन जाती है। और लालबाग से लेकर गिरगांव तक, दादर से लेकर बोरीवली तक, पूरा शहर ना एक रंग में रंग जाता है। हर गली में पंडाल सजे हैं देखिए, और जो जगमगाहट है ना, वो आपकी सारी थकान मिटा देती है। आप थके हारे शाम को या कभी भी रास्ते से चलोगे तो देखोगे कहीं ना कहीं एक पंडाल होगा जहाँ पर रंग बिरंगे कपड़ों से सजावट या कुछ और कार्यक्रम चल रहा होगा, और वो देखकर शायद मंद ही मंद आप मुस्कुरा देते होंगे और कहीं ना कहीं उससे आपकी पूरी थकान भी मिट जाती होगी। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों कि यह त्यौहार केवल एक समुदाय का नहीं, पूरे मुंबई का है। हर धर्म हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बप्पा का स्वागत करते हैं। यही तो है ना हमारी मुंबई की असली ताकत।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफ एम रेनबो। मैं हूँ कौन, मैं हूँ और कोई नहीं, आपका प्यारा आरजे अनूप। शो का नाम है मस्त मुंबई और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है, कितने सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए कुछ लिसनर्स के हम नाम बता देते हैं। धारा शिव से हैं यशवंत अडमुटे जी, और टिगरेपाड़ा जो है वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश गजानन राउत, श्रेय मिलेश राउत और आर्या मिलेश राउत, और राकेश माथुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और फिरोज सिगन पोरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो बने रहिए, शो का नाम है मस्त मुंबई। फिर लौटूंगा इस छोटे से अल्प विराम के बाद।
2: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
3: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
2: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
4: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे अनूप और 107.1 एफएम रेनबो पर हम सब मना रहे हैं गणपति बप्पा का उत्सव और मुंबई की बारिश के आगमन की बात, और इसी के बाद हम थोड़ी देर में बात करेंगे कुछ खट्टे मिट्टे किस्से मुंबई की लोकल ट्रेनों के भी। दोस्तों, इस हफ्ते बारिश ने जो कमबैक किया है ना, उसने माहौल को एकदम रोमांटिक और थोड़ा एडवेंचरस ऐसा कुछ मिक्स टाइप का बना दिया।

एक तरफ लोग कुर्ता पजामा और शानदार साड़ी सलवार कुर्ते और पारंपरिक वेशभूषाओं में सजे धजे हैं, तो दूसरी तरफ ना एक हाथ से अपना छाता लेकर भी पानी से बचकर निकलने की जो उनमें एक जद्दोजहद देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अगर मुझसे आप पूछोगे तो मुझे क्यूट भी लग रहा है देखकर। आज सुबह ही मैंने देखा जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था, तो अंकल कल रात को जो बारिश हुई है मुंबई में, उसके बाद सुबह सुबह कुछ लोग जो है पानी से बचते हुए कुर्ता पजामा पहनकर कुछ छलांग लगा रहे हैं, और एक प्यारी सी महिला मैंने देखी जो अपने साड़ी के पल्लू से कुछ मोदक या कुछ उनके हाथ में प्रसाद होगा उसको बचाते हुए कहीं लेकर जा रही थी। बड़ा ही प्यारा दृश्य था। तो दोस्तों, ये जो पारंपरिक कपड़ों और बारिश की जुगलबंदी है ना, और जो गणपति का उत्सव है, और लोगों का जो एक अंदर से भरा जल्लोश और प्यार है, ये शायद केवल हमें मुंबई में ही देखने मिल सकता है।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। मैं हूं आरजे अनूप और काफ़ी नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह लक्ष्मी मत्सकार है, विक्रम अठवड़े है, दत्तात्रेय आदत और है वेड़ापुर से, श्रीधर मोराजकर है और उनके साथ में है विद्या अठवड़े जी भी मीरस से, तो और प्रमोद चिंचोड़कर जी हैं अकोला से। तो वेलकम आप सभी का दोस्तों। आज तारीख है 16 सितंबर, तो आज के दिन भारतीय सिनेमा विज्ञापन जगत और साहित्य प्रेमियों के लिए ना एक खास दिन है। आज जन्मदिन है उस शख्स का जिसकी कलम से निकले शब्द ना सीधे दिल में उतर जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार कवि विज्ञापन गुरु प्रसून जोशी जी की। तारे जमीन पे पर जो दिल को छूने वाले गाने थे उस फिल्म के, उससे लेकर और उसके पहले जो आई थी रंग दे बसंती के रोंगटे खड़े कर देने वाले तरानों तक, प्रसून जी ने अपने शब्दों से ना हर जज्बात को एक नई पहचान दी है।

वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज प्रसून जोशी जी के जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे प्रसून जोशी जी। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में जन्मे प्रसून जोशी जी

सादगी और गहराई उनकी हर पंक्ति में नजर आती है दोस्तों। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, विज्ञापन की दुनिया में भी उन्होंने अपनी जो रचनात्मकता है ना, उसका डंका बजाया हुआ है। चाहे वो आपको याद है ठंडा मतलब कोका कोला का विज्ञापन हो, या हैप्पीडेंट का जो वो दांत चमक कर पूरे गली मोहल्ले में जो रोशनी हो जाती थी, किसको याद नहीं होगा वो, है ना। तो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर शब्दों में सच्चाई हो तो वो हर उम्र के इंसान को जोड़ सकती है। भाग मिल्खा भाग, फना और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों के लिए प्रसून जोशी जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। तो वंस अगेन 107.1 FM रेनबो की पूरी टीम की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से प्रसून जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी कलम यू ही नए रंगों से हमेशा सजती रहेगी और हमारे सामने नए नए नगमे लाती रहेगी।

दिल कैसे भरेगा, क्योंकि माहौल है गणपति बप्पा का और बाहर जो है बारिश झमाझम हमें लगाए जा रही है, तो फिर कैसे दिल भर सकता है दोस्तों। कुछ नए श्रोतागण जो जुड़े हैं उनके नाम ले लेते हैं जल्दी से। स्नेहा हमें वर्ली से जुड़ चुकी है, विजय लक्ष्मी शेट्टी जी हैं, शुभदा जी हैं, चेतन कुमार जो हैं वो हमें मानपुर बाजार गया बिहार से जुड़ चुके हैं। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इस गाने के बाद बात करेंगे कुछ और मुंबई के किस्सों की।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 एफएम रेनबो पर हम सुन रहे हैं मस्त मुंबई। मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप। दोस्तों, जहां हम आज कुछ लोगों का जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं आज हमारे भारत देश ने अपने कुछ अनमोल लोगों को खोया भी है। 1965 युद्ध में

अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने गए भारतीय सैनिक ए बी तारापोरे जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और पांच सितारा रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह जी का 2017 में आज ही के दिन निधन हुआ था। तो एफएम रेनबो की पूरी टीम की ओर से हमारे इन जाबाज सिपाहियों को एक श्रद्धांजलि और नमन।

हम बात अब करेंगे मुंबई की धड़कन यानी हमारी लोकल ट्रेनों की। दोस्तों गणपति के दिनों में ना लोकल ट्रेन का नज़ारा बदल ही जाता है। अभी कल शाम की बात है, मैं तो यहीं स्टूडियो में अपना शो करके जब वापस जा रहा था तो चर्च गेट से जाने वाली लोकल जो होती हैं वो आरती के समय अलग ही रंग में नज़र आ जाती हैं। लेडीज़ और जेंट्स के डब्बों में कहीं ना कहीं आरती भजन शुरू हो जाते हैं। तो किसी ने कल अपनी पानी की बोतल को ही मंजीरा बना लिया, कहीं ठोक कर संगीत देने लगा, तो कोई अपने बैग पर ही हाथों से ताल देने लगा। जो लोग दिन भर काम करके थके हारे लौट रहे थे वो भी ताली बजाकर गाने लगे एक मुस्कुराहट के साथ। किसी ने डिब्बे में मोदक बांटना शुरू किया तो उसके बाद मिठाई बांटने का एक सिलसिला भी शुरू हो गया। उसने कहीं ना कहीं मुंबई की लोकल को ना एक अजनबियों का परिवार बना दिया। यही तो लोकल ट्रेन का जादू है, धक्का खाकर भी चेहरे पर मुस्कान रह ही जाती।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 एफएम रेनबो, मैं हूं आरजे अनूप। हम बात कर रहे हैं मुंबई बप्पा बारिश और हमारी अपनी लोकल ट्रेनों की। दोस्तों, इन 10 दिनों में मुंबई का हर घर खुला रहता है। हमारे घर बप्पा आए हैं, दर्शन के लिए ज़रूर आना, बस यह वाक्य पूरे शहर को ना जोड़ देता है एक परिवार जैसे। रिश्तेदारों के घर जाना, दोस्तों के साथ पंडाल हॉपिंग करना, और हाँ, कैलोरीज जो होती है ना, उसकी चिंता किए बिना उकड़ी से मोदक ये दबा कर खाना, इसका मज़ा ही अलग है। बारिश की वजह से भले ही हमें थोड़ा ट्रैफिक मिले, लेकिन जब आप किसी के घर पहुंचते हैं, गर्म चाय, बप्पा का प्रसाद मिलता है और नए लोग भी मिलते हैं वहाँ पर, तो सारी ना परेशानियाँ गायब हो जाती है। कुछ किस्से बातें शुरू हो जाते हैं जिससे आपको भी मज़ा आता है, कुछ नए लोगों से मुलाकात का एक अनुभव भी हो जाता है जो शायद कम ही होता है आज के इस दौर में। तो यह त्यौहार हमें सिखाता है कि अपनों के साथ भी वक्त बिताना कितना ज़रूरी है। सही कहा ना?

0: जी।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है मस्त मुंबई में आपसे विदा लेने का। लेकिन गणपति उत्सव की यह खुशी, यह उमंग और यह मुंबईया जोश दोस्तों रुकने वाला नहीं है। बारिश में अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पारंपरिक कपड़े पहनिए, तस्वीर खिंचवाइए, मोदक खाइए और लोकल ट्रेन में सफ़र करते समय अपने सह यात्रियों के साथ यह खुशियाँ ज़रूर बांटिए। जितना मुमकिन हो इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मनाएं और अपनी मुंबई को और अपने आसपास हर जगह को हमें कोशिश करनी है कि थोड़ा साफ भी रख लें, है ना। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अनूप, लेता हूं आपसे इजाज़त, लेकिन ठीक 10 बजे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा हिंदी में मुख्य समाचार, जिसके बाद होगा हमारा शो नमस्ते भारत, जहाँ मैं बात करूँगा आज भारत की एक ऐसी महिला लेजेंड की जिनका आज जन्मदिन है। और अगर आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइए हमारे व्हाट्सएप पर, हमारा नंबर है 8657661071, 8657661071। इस महिला लेजेंड का आज जन्मदिन है और अगर आप जान गए मैं किन की बात कर रहा हूँ तो मुझे इनका नाम व्हाट्सएप करिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ 107.1 FM रेनबो पर। और क्या कहूँ, जाते जाते गणपति बप्पा मोरिया।

अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मुंबई में गणेश उत्सव के दूसरे दिन कल भगवान गणेश का विसर्जन शुरू हुआ। मुंबई में कल रात 9 बजे तक 24,600 से अधिक गणेश प्रतिमाओं का विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। आज विश्व ओजोन दिवस है। यह दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्यवाही। पुरुष क्रिकेट में कल भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली के उसी मैदान पर खेला जाएगा। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शो का नाम है नमस्ते भारत और मैं हूं कौन, मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनूप। और जैसा कि अनूप की प्रथा है, स्वागत करूंगा आपके इस शो में एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। आज दोस्तों तारीख है 16 सितंबर। आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में ना कोई साधारण दिवस नहीं है। आज एक ऐसी पावन आवाज़ का जन्मदिन है जिसने न केवल

भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी भक्ति और सुरों से मंत्रमुग्ध कर दिया था। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं कार्नाटिक संगीत की सम्राज्ञी, भक्ति और साधना की प्रतिमूर्ति M.S. सुब्बु लक्ष्मी जी को। तो अगले कुछ मिनटों में हम चलेंगे M.S. जी के अद्भुत जीवन के उस सफ़र पर, सुनेंगे उनके किस्से और महसूस करेंगे उनके कुछ सुरों का जादू भी। बने रहिए मेरे साथ, यानी RJ अनूप के साथ, सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आज 107.1 एफएम रेनबो पर बात कर रहे हैं नमस्ते भारत में एमएस सुब्बलक्ष्मी जी की। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के सांस्कृतिक शहर मदुरई में मदुरई षणमुखा व डिबू सुब्बलक्ष्मी का जन्म हुआ। और दोस्तों, संगीत तो जैसे उनके खून में बहता था। उनकी माँ षणमुखा व विडू खुद एक बेहतरीन वीणा वादक थी। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस 10-12 साल की उम्र में सुब्बलक्ष्मी जी ने अपना पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड गा दिया। और सिर्फ 13 साल की उम्र में मदुरई के प्रसिद्ध कुंभा कोणम संगीत उत्सव में अपनी पहली प्रस्तुति भी दे दी। और इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि बड़े बड़े संगीत के दिग्गज भी हैरान हो गए। एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब हम कर्नाटिक म्यूज़िक की बात करते हैं सुब्बलक्ष्मी जी का, तो कर्नाटिक म्यूज़िक दक्षिण भारत की प्राचीन और समृद्ध शास्त्रीय संगीत परंपरा है। यह मुख्य रूप से कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। यह संगीत राग जो होती है, मेलोडी जिसे हम कहते हैं, और ताल जो होती है, उसके सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें 72 मूलभूत राग होते हैं जिन्हें मेलकर्ता राग भी कहा जाता है। और जो कर्नाटिक संगीत हम कहते हैं, उसकी आत्मा जो होती है वो एक भक्ति रस की होती है। तो इसके अधिकांश साहित्य और रचनाएं हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में रची गई हैं। और जो इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गायन के अलावा, वो होते हैं वीणा, वेणु जो बांसुरी होती है, मृदंगम, वायलिन और घटम। तो हम और बात करेंगे एम एस सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में ठीक इस गाने के बाद।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, नमस्ते भारत। 107.1 एफएम रेनबो पर चल रहा है, मैं हूं आरजे अनूप। और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप समझ गए हो कि किसकी बात हम कर रहे थे तो मुझे व्हाट्सएप पर बताएं। और सही जवाब देखिए हमें कितने लोगों ने दिया है। बाबा दादर से पंकज महोट जी ने, वैदेही ने, और पंढर कवड़ा से अनिल बुरांडे जी ने, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, और पेंच नागपुर प्रकल्प से रविंद्र कुड़पे, रौनक कुड़पे, विजय कुंभरे और सुरेश वर्थी जी ने। तो थैंक यू आप सबका। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। और मिलिंद शिद्धे जी जो दहीसर से कह रहे हैं, अनूप जी आपकी आवाज़ हमें बहुत प्यारी लग रही है, आप बड़े अच्छे से कुछ कहानी हमें सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मिलिंद जी, कोशिश यही करता हूँ कि सबको अच्छा लगे। तो दोस्तों आप जानते हैं क्या कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने अपनी सुरीली आवाज़ के साथ साथ बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू भी बिखेरा था। जी हाँ, उन्होंने एक्टिंग भी की थी। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1945 में आई फिल्म मीरा ने इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म में उन्होंने संत मीराबाई का किरदार निभाया था। जब उन्होंने हरी तुम हरो जन की भीड़ और मोरे तो गिरधर गोपाल गाया, तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात मीराबाई ही गा रही हो। और उनके फैंस की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू जी, सरोजनी नायडू जी, और महात्मा गांधी जी भी उनके भजनों के इतने बड़े प्रशंसक थे कि वे अक्सर MS जी की आवाज़ में भजन सुनना पसंद करते थे। क्या बात है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, नमस्ते भारत में। मैं हूं आरजे अनूप और हम आज बात कर रहे हैं हमारी लेजेंड, म्यूजिकल लेजेंड भारत की, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी की, जिनका आज जन्मदिन है, उनकी जन्म जयंती है। दोस्तों, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी की आवाज़ की सीमाएं ना केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बात है वर्ष 1967 की, यानी 1966 की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एम एस जी को आमंत्रित किया गया। और बात बता दूं आपको कि ऐसा करने वाली वे भारत की पहली कलाकार बनी है। यूएन हॉल में जब उनकी आवाज़ गूंजी तो पूरी दुनिया स्तब्ध और हैरान रह गई। वहाँ उन्होंने प्रसिद्ध रचना मैत्रीम भजन गाकर एक विश्व शांति का शानदार संदेश दिया। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिकल के दिग्गज और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उनके बारे में कहा था कि एमएस की आवाज़ में एक ईश्वरीय शुद्धता है। वाकई उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर स्थापित कर दिया। और यही नहीं, उनका गाया हुआ जो सुप्रभातम है, भज गोविंदम है और विष्णु सहस्त्र नामम आज भी भारत के करोड़ों घर की सुबह की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
2: बड़ा पुरदर्द गाना है ये, इसकी रचना भी बड़ी मुश्किल से की मैंने। समझ में नहीं आता था कि इस गाने के लिए कौन सा राग चुनूं। एक दिन सोचते सोचते अचानक मुझे ख्याल आया कि इस गाने के लिए सिर्फ नंद राग ही मुनासिब होगा। लता मंगेशकर और डायरेक्टर राज खोसला मेरे पास ही बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी राग में अच्छा बनेगा। बस फिर क्या था, रोशनी दिखाई देने लगी, गाना सुरों में ढलने लगा।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप। हम सुन रहे हैं नमस्ते भारत में। आज MS सुब्बुलक्ष्मी जी की जीवन दास्ता, क्योंकि आज है उनकी जन्म जयंती। MS जी को दोस्तों जीवन काल में उनके अनेक सम्मान मिले। 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय संगीतकार बनी। और इतना ही नहीं, 1998 में उन्हें भारत जो है सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा, और यह सम्मान पाने वाली वे देश की पहली संगीतकार बनी है। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी लेजेंड है हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी जी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात क्या थी जानते हैं दोस्तों? इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वे बेहद सादगी पसंद थी। उन्होंने अपने संगीत कॉन्सर्ट से मिलने वाले करोड़ों रुपए धर्मार्थ कार्यों, अस्पतालों व अनाथालयों को दान कर दिए। वे सिर्फ संगीत की देवी नहीं बल्कि करुणा की एक मूरत भी थी। सच कहूँ तो असल भारत रत्न ऐसे ही तो बनता है ना।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 FM रेनबो पर नमस्ते भारत में मैं हूं आरजे अनूप। हम बात कर रहे हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी की। दोस्तों, जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पति के सदाशिवम के निधन के बाद MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने सार्वजनिक प्रस्तुतियां देना बंद कर दिया था और 11 दिसंबर 2004 को 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में इस महान सुर साधिका ने अंतिम सांस ली। भले ही आज MS सुब्बुलक्ष्मी जी हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली और पावन आवाज़ युगों युगों तक भारतीय संगीत की पहचान बनी रहेगी। उनका जीवन संगीत साधकों के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है जो हमेशा समर्पण, विनम्रता और भक्ति भाव की राह जो है हम सभी को दिखाता रहेगा।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आरजे अनूप। हम सुन रहे हैं नमस्ते भारत 107.1 एफएम रेनबो पर। वक्त आ गया है इस स्पेशल ट्रिब्यूट को यहीं समेटने का, लेकिन एमएस सुब्बू लक्ष्मी जी की आवाज़ और उनकी विरासत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। दोस्तों, आज उनकी जयंती पर 107.1 एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से इस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन। अगर आज आप भी अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब और सुकून के साथ करना चाहते हैं तो एमएसजी का कोई भी भजन ज़रूर सुनिएगा। अब मैं आपका दोस्त आरजे अनूप लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगा बहुत जल्दी। और जैसा कि अनूप की प्रथा है, विदा भी लूँगा एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय दोस्तों।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC में भाग ले रहा है। सम्मेलन 12 से 19 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। समाचार में आगे, गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र के लिए किसानों के बकाया उचित और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। समाचार में आगे, मुंबई में गणेशोत्सव के दूसरे दिन कल भगवान गणेश का विसर्जन शुरू हुआ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आदेश के अनुसार 6 फीट से कम ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करना अनिवार्य होगा। महानगर पालिका ने विसर्जन के लिए 281 कृत्रिम तालाबों के अलावा 44 समुद्र तट और जेट्टी तथा 23 प्राकृतिक झीलों की व्यवस्था की है। समाचार के अंत में, गणेशोत्सव के अवसर पर BEST यानी बेस्ट ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। त्यौहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई मेट्रो की लाइन 2A, 7, 9 और 2B पर सेवाएं रात 12:30 बजे तक चलेगी। लोगों की सुविधा के लिए इन चारों लाइनों पर 10 से 15 अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: इस गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शास्त्री।

जी हाँ दोस्तों, एफएम रेनबो की स्टूडियो की घड़ी में ठीक 11:16 हो रहे हैं। आप मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल के संग है और दोस्तों आज थोड़ी बातें करेंगे भूलने के बारे में। जी हाँ, भूलने के बारे में, क्योंकि जब गणपति बप्पा आते हैं कहिए या फिर हम कोई भी चीज़ में या भक्ति में कहिए, जोग में कहिए, लीन हो जाते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं और याद की यात्रा में चले जाते हैं। तो आइए, आपको क्या लगता है, ये भूलना जो है वो अच्छी बात है या बुरी बात है, इस पे थोड़ी बहुत आपकी क्या राय है ये मुझे जानने की ख्वाहिश है। तो आप तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 यानी 8657661071। तो जी हाँ, सोनू निगम के साथ जोगी बनते हैं और याद की यात्रा में हमारी यात्रा शुरू करते हैं।

यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर, और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंजू, अंधेरी ईस्ट से हमसे जुड़ चुकी है प्रकाश शिंदे, कहिए। श्री क्षेत्र पंढरपुर से हमारे साथ दोस्त दत्ता केदार है। वरेड़े से अशोक पाटिल, प्रमोद चिंचोलकर, प्रदीप अनंत कृष्णन, प्रणव शिंदे और भी कई सारे दोस्त हमारे साथ हैं। पूजा सावंत है और तुलसी है साथ में। बेंगलोर से सावन खोखड़े है हमारे साथ है। राकेश माथुर भी है, वैदेही भी है, और अरुण गावकर है वरेड़ी से, विजेंद्र घाटोल है अकोला से। तो आप सभी का स्वागत, सभी गुड मॉर्निंग गुड विशेष भेज रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया कह रहे हैं, जी हाँ गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा हमें बुद्धि प्रदान करे और सभी विघ्न को हमारी राह से दूर कर दे और सपनों जैसी हमारी ज़िंदगी सज जाए, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए

एक दूसरे के लिए जो है मंगलमय कामना रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं और अगला गीत सुनते हैं और एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ ही बनते हैं।

0: दोस्तों आकाशवाणी के स्टूडियो के घड़ी में ठीक 11:30 होने ही वाले हैं और हमारी जो बातें चल रही है, गप्पे मार रहे हैं हम भूलने के बारे में। तो वैसे मेडिकल में भूलने को बीमारी को क्या कहते हैं, आप हमें जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। तब तक हम सुनते हैं छोटा सा विज्ञापन।
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
0: जी हाँ, भूलने के बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो फिर अक्सर ऐसा होता है परीक्षा के समय में लड़कों के साथ ऐसा होता है कि आखिरी एक आध दो दिन में वो जो है किताब को छूते हैं, क्या सिलेबस है वो जानते हैं, कितनी पढ़ाई है उनका करनी चाहिए, उसका गहरा एहसास उन्हें होता है और फिर वो जो है ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट कर सके, पाचन कर सके। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक विषय को दूसरे विषय में घोल देते हैं और थोड़ा सा भेल बन जाता है हम जो पढ़ते हैं उसका। और कई बार ऐसे हो जाता है कि हम चीज़ें भूलने लगते हैं। तो हमारी जो माता है, माता रानी, कहती है अब बेटा बस हो गई पढ़े, अब तू जरा सो जा, क्योंकि सोना ही एक अच्छी औषधि है। तो आइए उससे जुड़ा हुआ गीत सुनते हैं और बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं।

बहुत बढ़िया शुभ लक्ष्मी मस्तकर, इन्होंने सही जवाब दिया और साथ में जो है डॉक्टर अंजू अंधेरी से उन्होंने भी सही जवाब दिया है। शुभ लक्ष्मी मस्तकर कहती है स्मृति लोप कहा जाता है, अल्जाइमर्स कहा जाता है, अमनेशिया कहा जाता है, और डॉक्टर अंजू सही कह रही है डिमेंशिया कहा जाता है, जो भूलने की बीमारी है उसे। और अक्सर हम कई सारी फिल्मों में देखते हैं कि हीरो अक्सर नाम भूल जाता है, या फिर जो कुछ फिल्म ऐसी भी है कि जिसमें जो है कॉमिक डेवलप हो जाता है इस भूलने की बीमारी के वजह से। तो सभी श्रोताओं का स्वागत है, दीपा पालकर जुड़ चुकी है, प्रणव शिंदे ने भी कई सारे संदेश भेजे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान हमारे साथ है, योगेश भवर हमारे साथ है, तेलंगाना से शंकराचार्य है। तो आप सभी के संदेश मुझे मिल रहे हैं और ज़रूर मैं सभी के साथ वो साझा करूंगा। दोस्तों कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई चीज़ बाज़ार से लाने अक्सर हमसे कहा जाता है और हम भूल जाते हैं और घर पे जाके डांट गिरती है, तो या फिर पढ़ाई के बारे में हमने ज़िक्र किया, या फिर छुट्टी के बारे में बॉस से बात करनी है और हम वो बात करना भूल गए, तो ये भूलने की आदत जो है कभी कभी महंगी पड़ सकती है, घर जाकर हमें डांट मिल सकती है या फिर खुद को बुरा भी लग सकता है। पर क्या सिर्फ अच्छी याददाश्त होना ही अच्छी बात है, आपको क्या लगता है? हमारे साथ हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, यानी 8657661

दोस्तों, हम सभी के जो श्रोताओं में मेरे ख्याल से यंगेस्ट श्रोता ने हमें जो है फ़ोन करके शुभकामनाएं दी, गणपति की शुभकामनाएं दी और सभी श्रोताओं को भी शुभकामनाएं दी। आगाशी गांव से महेंद्र भाई का फ़ोन था और जो है उन्होंने शुभकामनाएं दी है। साथ ही कुर्ला से अयाज चौधरी, इन्होंने भी फ़ोन करके जो है भूलने की आदत के बारे में कहा कि कभी कभी पैसे में गड़बड़ी हो गई या फिर पैसे लेने को हम लोग भूल जाते हैं टिकट काउंटर से या बैंक से। तो जी हैं, तो ये थोड़ा सा दुखदायक हो सकता है। तो आपके क्या विचार है भूलने के बारे में, हमें बताइए। यही आकाशवाणी के मुंबई केंद्र पर FM रेमबो, म्यूजिकली योर्स।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: जी हाँ, हमारी जो दोस्त है दीपा पालकर कहती है कि अक्सर जो बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं और वो चीज़ें भूल के आते हैं, वो ये लक्षण अक्सर पतिदेवों का होता है। तो जी हाँ, कभी कभी ये देखा जाता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, भूलने के बारे में हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे आप सभी के संदेश आ रहे हैं। पंकज मोहड़ कहिए, फिरोज सिंगनपुरिया और आप सभी को जो कार्यक्रम पसंद आ रहा है। राम प्रजापति ने भी गुड मॉर्निंग का संदेश भेजा है। तो क्या लगता है, कभी कभी पुरानी दर्द देने वाली बातें भूल जाना कभी कभी अच्छा लगता है, और फिर भूला हुआ ही हमें भूलना ही सुकून देता है। तो और सभी चीज़ें वैसे याद रखना ज़रूरी नहीं होता। तो याद कीजिए, आपने 13 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था या फिर लंच में क्या खाया था, क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें याद रख के कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वाइप आउट होना ही बहुत ही वरदान जैसा है। तो जी हाँ, भूलना एक वरदान भी हम मान सकते हैं, क्योंकि सारी बातें याद करना ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की जब बात निकली है तो ये गाना तो बनता ही है। थोड़ा पतंग को ढील दीजिए और मन को थोड़ा बहकने दीजिए।

जी हाँ दोस्तों, हमारे जो दोस्त है अमित भगत, उन्होंने एक प्यारी बात लिखी है। वो लिखते हैं कि कोई बात कभी कभी ऐसी होती है जो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो बात भूलने की नहीं होती। तो जी हाँ, अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का बर्ताव जो है, या फिर कोई बात ऐसी जीवन में घट जाती है, वो जो है हमारे मन पर जो है एक ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कभी कभी पहले प्यार की ही बात कर लीजिए, तो जी हाँ, तो उसे भूलना थोड़ा मुश्किल होता है। पर समय सभी चीज़ों पर एक कारगर दवा है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, कुछ इसी बात से मिलता जुलता। आप भी गीत सजेस्ट करते रहिए। जी हाँ, हम व्हाट्सएप नंबर

तो आपको पता है 8657661071। तो विषय से मिलता जुलता गीत जो आपके जहन में आ रहा है, जो आपके दिल के करीब है, वो व्हाट्सएप कीजिए और कोशिश करेंगे कि हमारे जो कार्यक्रम में उसे शामिल करना और भी जो गीतों की रंगोली हम बना रहे हैं वो और भी सुंदर और सजीवी हो जाएगी। ठीक 12 बजे हम सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:02 पर हम सभी का पसंदीदा कार्यक्रम म्यूज़िक कैफ़े लेके फिर हाजिर होऊंगा, आरजे डॉक्टर निखिल। तो कॉफ़ी चाय जल्दी से गर्म कर लीजिए क्योंकि कुछ ही मिनटों में हमें चाय कॉफ़ी पीनी है और संगीत एंजॉय करना है।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। समाचार में आगे, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने बीड जिले के पाटोदा में रात 2 बजे तक एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक शारीरिक थकान के कारण उन्हें मुंबई की ओर अपने आगे की यात्रा रद्द करनी पड़ सकती है। अपने भूख हड़ताल के 18वें दिन जरांगे पाटिल ने कहा कि अगर समर्थक उनके पीछे चलते रहे तो वह अपनी यात्रा रोक देंगे और या तो स्थानीय स्तर पर धरना शुरू करेंगे या अंतरा वाली सराटी लौट जाएंगे। समाचार में आगे, नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद यह संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। समाचार के अंत में, भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उप प्रबंधक निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की आर्थिक बढ़ोतरी की अगली बड़ी लहर का नेतृत्व करने की क्षमता है। इसकी वजह देश की मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की तेज प्रगति और लगातार बढ़ती तकनीकी क्षमताएं हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: गाली।
1: जी हाँ दोस्तों, हमें दाव तो लगाना है क्योंकि तकदीर हमें बदलनी है। जी हाँ, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे कार्यक्रम म्यूज़िक कैफ़े में। और संगीत के साथ आप चाय कॉफ़ी का आनंद भी ले रहे हो या फिर थोड़ी ही देर में खाना खाने का, भोजन का भी समय हो चला है। तो जो भी है, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एआई के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या लगता है कि हमें वरदान है, चुनौती है या एक अभिशाप है, आपको क्या लगता है? और दोस्तों आपको बता दूं, हमारे साथ जो है देवभूमि, जी हाँ, उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे दोस्त मुकेश वालिया भी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। और जी हाँ, आप लोग जो है हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ गीत आपको याद अगर आ रहा हो तो फील फ्री कि आप व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। सही सुना आपने, 8657661071। तो आइए थोड़ा फ्लैशबैक में जाके फिर आगे जाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हमारी दोस्त है ग्लोरिया फर्टाडो, वो भी शुभकामनाएं दे रही है और एआई के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सुरेश वैष्णव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद सिंसोलकर है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एआई के बारे में जो है हम बातचीत कर रहे हैं, पंकज मोहड़, विजय लक्ष्मी शेट्टी हमारे साथ है, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ, कुछ संदेश ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि एआई के वजह से जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्रांति हुई है, बदलाव हुआ है। और एक संदेश में लिखा है कि एआई के वजह से जो है वो गति के साथ गुणवत्ता भी हमें एआई के वजह से मिलती है। तो जी हाँ, आपने सही कहा, तो हमें फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फिंगर टिप्स पर ही जो है अब तकनीक अवेलेबल है, रंगून जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए सुनते हैं, पुराने ज़माने को याद करते हैं।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
1: जी हाँ दोस्तों, हमारी बात चल रही है एआई के विषय पर म्यूज़िक कैफ़े इस कार्यक्रम में। और जो है हमारे दोस्त ने मुझे चाय कॉफ़ी का फ़ोटो निकाल कर भी भेजा है, तो जी हाँ मैं ये चाय कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ। और आयुष प्रधान हमारे ठाणे से जो है वो लिखते हैं कि मैं एआई अभियांत्रिकी का छात्र हूं और मेरे हिसाब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सीखना चाहिए, उसका योग्य तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि मानवता के हित में वो काम करे। इस प्रेरणा से उसे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अंत में जो है तंत्र ज्ञान इंसान के लिए है, इंसान तंत्र ज्ञान के लिए नहीं है। जी हाँ, एमटेक के विद्यार्थी है, एमटेक एआई स्टूडेंट हैं, ठाणे से हमारे आयुष प्रधान। बहुत ही बढ़िया कहा। तो आपको क्या लगता है एआई के बारे में कि हमें इंसान को ये एक चुनौती है, वरदान है या अभिशाप है, हमें बताइए। और ये बेहतरीन संगीत का आनंद उठाते हैं क्योंकि ये बाजी हम लगा चुके हैं। बाजीगर फिल्म से अगला गीत पंकज उधास की आवाज में।

या दोस्तों, आप सभी के प्यारे प्यारे संदेश जो है वो हम तक पहुंच रहे हैं। हमारी जो दोस्त है मीरा श्रीधर डिचोलकर भांडुप से, वो लिखती है कि जी हाँ, एआई का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो इंसान ही करता है, पर थोड़ा सा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो डर बना रहता है। स्पेशली जो बैक ऑफिस का जैसे काम होता है, टाइपिंग कहिए, स्कैनिंग कहिए, तो ये थोड़ा सा खतरा उन्हें ऐसा लगता है। तो बहुत ही अच्छी राय है। विजय लक्ष्मी शेट्टी लिखती है चेंबूर से कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है कि पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ सही है, गलत है, मिसयूज़ भी हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। फिरोज सिंगन प्रिया लगते हैं कि थोड़ा सा 50-50 है कि हमारी आवाज़ या हमारा फ़ोटो की नकल करने की भी चांसेस हो सकते हैं। और हमारी जो दोस्त है दीपा पालकर, वो लिखती है कि एआई है तो बहुत बढ़िया है, हमें चमका दे सकता है, और कभी-कभी जो है हमें करेक्ट भी कर सकता है, कभी-कभी जो है गलतियां भी हो सकती हैं। जी हाँ, सही है, क्योंकि जो चीज़ हम फीड करेंगे उसमें, जो इनपुट देंगे वही बाहर आएगा। तो अगर हमने गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो हमारा जो आउटकम है वो गलत आ सकता है। तो जी हाँ, दो तीन चीज़ों पे ध्यान

हमें रखना चाहिए कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है जो है श्रेय राउत, मिलेश गजानंद राउत वाडवंड से इन्होंने। और एआई का उपयोग करते समय जो है हम किस विषय में सर्च कर रहे हैं उसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है, और बहुत ही ज़रूरी ज़रूरी नटशेल में जो बात हमें याद रखनी है कि उत्तरदायी हम हैं, एआई नहीं है। तो जो है अगर गलती हुई तो उत्तरदायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसका स्वीकार हमें करना होगा, तो एआई उसका उत्तरदायित्व नहीं लेगा। इसलिए आज का टेक होम मैसेज जो हम ले सकते हैं कि उत्तरदायी हमें बनना है, रिस्पॉन्सिबली जो है एआई का इस्तेमाल करना है। तो इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में ठीक 12:25 होने ही वाले हैं, ठीक 5 मिनट के बाद यानी 12:30 पे हम सुनेंगे NCERT उमंग जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो आइए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और ठीक 1 बजे हम जो है सुनेंगे मराठी में समाचार छत्रपति संभाजीनगर से दोपहरच्या बातम्या, और 1:05 पे हमारा जो पसंदीदा कार्यक्रम है हिट एंड हॉट जो कि लिसनर्स चॉइस कार्यक्रम है। तो आप सभी आपके जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स है हमें भेज सकते हैं, नंबर तो आपको पता है 8657661071 यानी 8657661071।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन

0: है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओ, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम,
3: आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful flowers.
1: And any other thing that you like in a garden?
5: I like sitting under the tree.
1: And you, Soham?
6: I like to see butterflies.
1: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
2: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
1: Very good. That there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
2: Yes, ma'am.
1: So, children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
2: garden.
1: Wonderful! You have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
2: Yes, ma'am.
1: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
2: Yes, ma'am.
1: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
2: A jungle!
1: That's correct! And if so many, so many grains of sand are together, as far as you can see,
2: they will make a desert!
1: Very nice! Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
2: Yes, ma'am!
1: This poem will tell us how

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ,
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है।

0: अध्यापक सिखाने वाला न होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, म्यूजिकली योर्स आप है आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। मेरा नाम है आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्ने, और जी हाँ, आप ही का कार्यक्रम है हिट एंड हॉट। और इसमें आप को पता है कि मैं बैक सीट पे होता हूँ और गाड़ी की यानी गाने की जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथों में होती है। तो आप जो गीत रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करते हैं कि उन्हीं गीतों का चयन किया जाए। और जी हाँ, रिक्वेस्ट की तो वर्षा हो रही है, वैसे मुंबई और बारिश जैसे समानार्थी शब्द हैं, वैसे ही रिक्वेस्ट की भी बारिश हो चली है। तो चलिए आगाज करते हैं कार्यक्रम का दिग्दर्शन और कविता ने रिक्वेस्ट की हुए गीत के संग। और ढेर सारे हमारे जो नए और पुराने दोस्त भी महफिल में शामिल हो चुके हैं, जैसे दादर से बाबा है, आकांक्षा मनोज सिन्हा है, गुरमीत सिंह, मीता सिंह है, प्रकाश शिंदे है, मिंटू थॉमस है, अभिजीत गवहानकर है। तो आइए, आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, याद प्यार हमारे तरफ से भी। और धुरंधर द रिवेंज फिल्म से अगला गीत शाश्वत सचदेव और खास साहब की आवाज़ में।

क्या रॉकिंग स्टार्ट है कार्यक्रम की, हिट एंड हॉट कार्यक्रम बहुत ही हॉट चल रहा है और आप सभी की जो पसंद की तो क्या कहने। जी हाँ, अयास जी का कुरला से, प्रकाश शिंदे जी का भी संदेश आया है, तो सुनील पांचाल नाला सुपारा से हमसे जुड़ चुके हैं, चेतन कुमार विजेंद्र घाटोल अकुला से, शुभलक्ष्मी मस्तकर, आकांक्षा मनोज सिन्हा झारखंड से हमारे गोप है, और देहरादून वाले हमें हमारे जो मुकेश वालिया है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी के संदेश मिल चुके हैं, मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी गपशप भी हो जाए क्योंकि ये आज के सेगमेंट का जो है, हमारे हिंदी सेगमेंट का कहिए, मतलब सुबह वाले एक से दो ये लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद मराठी सेगमेंट शुरू हो जाएगा, तो ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ। तो आज थोड़ा सा हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया से भी ज़्यादा हमें बातें करनी है फॉलोअर्स के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में, तो क्योंकि हर एक जन जो है सोशल मीडिया पे कहता है लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, तो आपको क्या लगता है ये फॉलोअर्स की या सब्सक्राइबर्स की क्या अहमियत है? तो हमें परवाह करनी चाहिए, नहीं परवाह करनी चाहिए, या फिर दिल जैसे चाहता है उसी मस्ती में हम झूमते रहना चाहिए? बताइए हमें और एंजॉय करते हैं अगला ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर, जो है म्यूजिकली योर्स।

दोस्त हैं प्रणव शिंदे, वो याद कर रहे हैं राम लक्ष्मण जी को। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने अपने धुनों से हर दिल में प्यार जगाया, उदासी के पलों में भी मुस्कुराना सिखाया, ऐसे महान फनकार राम लक्ष्मण जी की आज जयंती है। तो जी हाँ, हम सब मिलके श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। जी हाँ, राम लक्ष्मण जी जिनका ओरिजिनल नाम विजय पाटिल है, तो उन्हें कोटि कोटि नमन। और अगला गीत रिक्वेस्ट किया है प्रकाश शिंदे ने, तो आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण जी ने ही कंपोज किया गया हुआ

जी हाँ, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर की बातें चल रही है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। और हमारी जो दोस्त है दीपा पालकर लिखती है कि सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखकर ज़्यादातर जो है लोग खींचे चले जाते हैं उस चैलेंज की तरफ या उस सोशल इन्फ्लुएंसर की तरफ, तो मायने रखते हैं। तो और भी सारी रिक्वेस्ट है, तो 1:30 पे हम सुनने वाले हैं राष्ट्रीय मराठी समाचार मराठी में। उसके बाद 1:40 पे हम फिर हाजिर होंगे लेके कार्यक्रम हिट एंड हॉट। तब तक जो है आप सभी को ढेर सारा प्यार, और सभी की जो फरमाइशें हम पूरी नहीं कर सकेंगे, पर जो है गीत बज रहे हैं वो अपने समझ के ही सुनिए और एंजॉय कीजिए। अजय साखरे और अमित भगत, राकेश माथुर, और भी देहरादून से हमारे दोस्त मुकेश वालिया, मुकेश कश्यप, प्रिया छत्तीसगढ़ से, अगली फरमाइश आप सभी के लिए। रफी साहब की आवाज में

जी हाँ दोस्तों, घड़ी में 1:50 जो है 50 अभी होने ही वाले हैं और सभी श्रोताओं की रिक्वेस्ट हमें मिल चुकी है, मिल रही है। तो पुणे से हमारे दोस्त हैं विशाल बापट, कहिए डिकैस्ट्रो जॉन कहिए। अकोला से हमारे जो दोस्त हैं विजेंद्र घाटोल जी, लगते हैं कि अगर हम कोई फेसबुक पेज या कोई सोशल मीडिया का पेज बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, तो जो है फॉलोअर्स की या सब्सक्राइबर की थोड़ी चिंता रहती है। तो बतौर दोनों पहलू से हमें सोचना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर के दृष्टि से और फॉलोअर के दृष्टि से। तो बहुत ही अच्छा सवाल है या विचार है, दोनों की तरफ से हमें सोचना चाहिए। और कंक्लूजिंग लाइन जो हमारे एक दोस्त ने लिखी है, नाम तो नहीं है पर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समअप किया है सोशल मीडिया का जो ये जाल है, अंतरजाल पटल पे ये जो सोशल मीडिया चलता है। तो उन्होंने कहा है कि एक साधारण गणित है कि फॉलोअर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, मतलब आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स है या आपके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर है उतना आपका उत्तरदायित्व बढ़ता है। तो जी हाँ, अगर आपके कम फॉलोअर्स है तो जी हाँ, खैर मनाइए, आनंद मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, क्योंकि आप पे ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं है। तो आपके मजबूत कंधों पर जो है वो कम वज़न है, आप लाइट रह के उड़ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। आपको सोच कर विचार कर कर ही हर एक एक्शंस करनी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ओपिनियन। यशवंत आड़मुठे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपा पालकर है, अभिजीत गवाणकर है, मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे साथ है। तो आप सभी का याद प्यार बनाए रखिए। तो मेरे जाने का समय हो चला है दोस्तों, समय को सीमा है, पर FM रेनबो मुंबई का कहिए, आकाशवाणी मुंबई का कहिए, मेरा यानी RJ डॉक्टर निखिल विद्या हरेंद्र शास्त्री का कहिए, आप पे जो प्यार है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो, जो है म्यूजिकली योर्स। तो तुम हो, आप लोग हो, तो महफिल में और रंगत आती है और आनंद मिलता है। आइए सुनते हैं अगले कुछ दो गीत, उसके बाद ठीक 2 बजे आप सुनेंगे मिडडे न्यूज़, 2:15 पे दोपहर समाचार, और इसके बाद जो है हमारा मराठी कार्यक्रम जो है सला दोस्त हो बोलू का ही, RJ गोपी के संग। बहुत ही अच्छे RJ हैं, बहुत ही प्यारे RJ हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं। तो ज़रूर हमें सुनना है अगला कार्यक्रम, और रॉक ऑन करते रहिए, क्योंकि हम और आप दोनों हैं रॉक स्टार।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के

0: रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमीकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व

0: ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: वासुदेव कमला
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जिंदगी, जिंदगी सभी के लिए वही है। फर्क बस इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दूसरों का दिल रखने के लिए जी रहा है। गुड इवनिंग मुंबई एंड नमस्कार एंड वेलकम टू एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खुश होंगे। और खुश होने की सबसे बड़ी वजह हमारे सामने है, पूरे भारत में गणेश उत्सव की धूम है और खासकर हमारी मुंबई में तो बप्पा के आगमन की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। मेरी बप्पा से प्रार्थना है, यही प्रार्थना है कि आप सभी के बप्पा सारे कष्ट दूर करें, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। और दोस्तों, जिंदगी से जुड़ी हर शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा प्यारा सा सेगमेंट, नाम है जिसका लव यू जिंदगी। और शो की शुरुआत में मैंने एक लाइन कही थी, जिंदगी सभी के लिए वही है, फर्क बस इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दूसरों का दिल रखने के लिए जी रहा है। मतलब कई बार हम अपनी खुशी के लिए किसी एक इंसान या किसी एक रिश्ते पर डिपेंड हो जाते हैं, किसी एक परिस्थिति पर डिपेंड हो जाते हैं। यानी हम अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम कहते हैं कि वो मेरे साथ है इसलिए मैं खुश हूँ, जब मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तभी मैं खुश होऊंगी। ऐसा होता है, लेकिन लिसनर्स, क्या हमारी खुशियों की पूरी जिम्मेदारी किसी एक सिचुएशन या किसी दूसरे इंसान की होनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि जिंदगी हमारी है तो उसे जीने का हक भी हमारा है। लोग हमारी जिंदगी में खुशियां जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी की पूरी चाबी उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो आज इसी खूबसूरत बात पर हम बात करेंगे और साथ में सुनेंगे प्यारे से गाने। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स।

जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम।
2: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
3: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आनंद बख्शी साहब ने बहुत ही सही लिखा है अपने इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गाने में, और होता भी ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास, वो कैसे भी खुश नहीं रह पाते। लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप ओनली ऑन FM Rainbow 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और लिसनर्स, कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, और वहाँ चार लोग आके एक ही सवाल पूछते हैं कि और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, और हम बड़े प्यार से आंसर देते हैं कि अंकल आंटी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके कुछ क्षण बाद शुरू होता है कंपैरिजन, अरे मेरा ये वो उस रिश्तेदार का बेटा भी यही कर रहा है, उसका तो इतना पैकेज है, वो तो विदेश चला गया, मेरे बेटे या मेरी बेटी ने ये कर लिया वो कर लिया। एंड ऑनेस्टली लिसनर्स, ये बातें उस समय तो सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन कई बार ये बातें हमारे मन में प्रेशर भी क्रिएट कर देती है। जी हाँ, हम सोचने लगते हैं कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर अगले फंक्शन में फिर मुझसे पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और यही प्रेशर कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने से रोकता है। तो फिर हम मेहनत अपने सपने के लिए नहीं करते, दूसरों के सवालों से बचने के लिए करते हैं। और शायद यहीं पे हमें थोड़ा रुक कर खुद से कहना चाहिए, मुझे सक्सेसफुल अपने रिश्तेदारों को जवाब देने के लिए नहीं होना है, मुझे सक्सेसफुल खुद की खुशी के लिए होना है। क्योंकि लोग तो सक्सेसफुल आप हो जाएंगे तब भी बोलेंगे, तो क्यों ना अपनी एनर्जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, अपने ड्रीम्स पर लगाई जाए, है ना। आप मेहनत करिए, अपना काम कीजिए, अपना समय दीजिए, और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी खुशी की, आपकी सक्सेस की खुशी की चाबी किसी रिश्तेदार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और हमारी और आपकी खुशी बताऊँ कब बढ़ती है, जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने मैसेज, अपने नंबर से मैसेज करिए, हमारा नंबर 8657661071। हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, जो हमेशा आपके लिए ऑन है। और अब आपके लिए दो खूबसूरत से बहुत ही प्यारे गाने मैं प्ले कर रहा हूँ। पहला गाना आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज़ में, स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

You are listening to Love You Zindagi only on FM Rainbow 107.1 FM musically yours और मैं हूँ आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि आपकी खुशी की चाबी किसी रिश्तेदार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। अब रिश्तों की हम आगे बात करें तो रिश्तों का हमारी ज़िंदगी में होना भी बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, यही तो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है, रिश्ते आपकी खुशी का हिस्सा ज़रूर हो, लेकिन आपकी पूरी खुशी सिर्फ वही रिश्ता हो, सिर्फ उसी रिश्ते की वजह से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी रिश्ता है आपका, आपका दोस्त है, आपका पार्टनर है, उनका खुश होना या उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर में होना, एक परिस्थिति में होना आपकी खुशी की वजह नहीं होना चाहिए। मतलब आपका पार्टनर खुश है तो आप खुश हैं, वो नाराज़ है तो आपका पूरा दिन ख़राब, आपका दोस्त आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप ठीक है, हाँ अच्छा फील कर रहा हूँ और उसने आज बात नहीं की, क्या दिक्कत है भाई, क्या बात हो गई, है ना। यानी वो खुश है तो मैं खुश हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी के साथ खुश रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन किसी के बिना खुश रह पाना आपकी ताकत है। तो ज़रूर रिश्ते रखिए, दिल से रखिए, बस अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी एक इंसान को मत दीजिए। चलिए इसी बात पे आपके लिए प्ले कर रहा हूँ मोहित, माफ़ कीजिएगा, सनमपुरी की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना, स्टे ट्यून्ड ऑन 107.1 FM। और हाँ, बहुत सारे कॉलर्स हैं जिनका प्यार हमेशा हमारे पे होता है। पंकज मोहिड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक पाटिल जी हैं वर्ली से, दत्ता केदार जी हैं पंडरपुर से, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और अब सनमपुरी और शिप्रा गोयल की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी हंसी तो फंसी।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
5: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आए दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि किसी और का बिहेवियर या किसी की वजह से हमारी खुशियां तय नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी अपनी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि जब मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तभी मैं खुश होऊंगी। बड़ा सोचिए, बिल्कुल बड़ा सोचिए, बड़े से बड़ा सपना देखिए। लेकिन उस बड़ी सक्सेस तक पहुंचने के रास्ते में जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हमें मिलते हैं ना, उन्हें भी जीत समझकर सेलिब्रेट करिए। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। उदाहरण के तौर पे आपने कोई अच्छा काम किया तो खुद को शाबाशी दीजिए, अप्रिशिएट करिए। अगर आपने कोई छोटा सा टारगेट अचीव किया, खुद को एक छोटी सी ट्रीट दे दीजिए। आपका जो भी फेवरेट खाना है बाहर जाकर खा आइए। और कभी कभी अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लीजिए।

कंटिन्यू हम पे बरसता है। नाम मैं उनके लेना चाहूँगा, श्रेया रावत जी है, हितेंद्र दास जी है, प्रणव शिंदे जी है पुणे से। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना प्यार हमें देते हैं। और अब आपके लिए शफाकत अमानत अली की आवाज़ में ये वाला गाना। स्टे ट्यून ऑन FM रेनबो 107.1 FM।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक टू एफएम रेनबो ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। और मैं हूं आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ, और आप सुन रहे थे लव यू जिंदगी। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, और हमारी खुशियां और हमारे रिश्तों में भी बिल्कुल ऐसा है, तालमेल होना चाहिए। हमारी जिंदगी में बहुत खास लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारा लाइफ पार्टनर, या हमारे बचपन का पक्का दोस्त, या वो हमारे आसपास के चार लोग जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो कि हम जो फैसला लें, डिसीजन लें, उससे हमारे आसपास के हर इंसान को खुशी मिले, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ के लिए आप खुद को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होंगे, आ सकते हैं, जहाँ आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे ये करके खुशी मिलेगी, और उस वक्त आपको किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी खुशी के लिए ऐसा करें कि जिससे किसी को दुख पहुँचे, जानबूझकर हम किसी को दुख पहुँचाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट हमें करनी है, अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट आप कीजिए, लेकिन सिर्फ किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी को लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करना भी तो सही नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, क्योंकि बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और लव यू जिंदगी में इस पूरी बातचीत में हमारे साथ बहुत से कॉलर जुड़े थे जिनको प्रोग्राम अच्छा लगा। फिरोज सिंगापुरिया जी को, वैद्य जी को प्रोग्राम अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाने के लिए। और अब आपके लिए के की आवाज़ आपके पास आएगी, और इसके बाद होंगे प्रादेशिक समाचार, और प्रादेशिक समाचार के बाद हम मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट जिसका नाम है अंदाजे बयां। स्टे ट्यून ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत होंगे मराठी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: वेलकम बैक टू FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स. और मैं हूं आपका रेडियो मित्र साकेत आपके साथ, और स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे सेगमेंट अंदाज़े बयां में. और अंदाज़े बयां में अब हम शायरी से यारी के सुहाने सफ़र पर चलते हैं. कभी कभी आपके साथ होता है ना कि दिल में बहुत कुछ है पर शब्द कम पड़ जाए, बस वहीं से शायरी जन्म लेती है. जहां बातें खत्म हो जाती हैं वहां एहसास बोलने लगते हैं. इसी बात में मिर्जा गालिब का ये शेर सुनिए. इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे. इश्क अपने हिसाब से चलता है, ना वक्त देखता है और ना ही वजह. और जब कोई जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर ऐसा महसूस होता है. और गुलजार साहब लिखते हैं कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन तेरे बिना जिंदगी जिंदगी भी तो नहीं. कुछ लोग शिकायतें नहीं देते, बस उनकी कमी चुपचाप महसूस होती है. और अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं प्ले कर रहा हूँ अरिजीत और निकिता गांधी की आवाज़ में. स्टे ट्यून्ड ऑन FM रेनबो 107.1 FM म्यूजिकली योर्स.

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
0: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
2: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
3: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक टू FM रेनबो ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। और आप सुन रहे हैं अंदाजे बयां। कभी कभी किसी का साथ इतना सुकून दे जाता है कि भीड़ में भी अकेलापन महसूस नहीं होता, और ऐसे ही एहसास को लफ्ज देते हैं जावेद अख्तर साहब। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। किसी का होना जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बस खूबसूरत बना देता है, प्यारा बना देता है। और जावेद अख्तर साहब की कलम से निकली ये शायरी हमेशा से मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे दिल के करीब है। एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में, एक मोहब्बत की ये तस्वीर है दो रंगों में, शौक सब मेरा है और सारी हया उसी की है। इस शेर में जावेद अख्तर साहब ने प्रेम की खूबसूरती और उसमें प्रेम प्रेमी प्रेमिका के स्वभाव को बहुत ही प्यारा बयां किया है। वो कहते हैं कि प्यार की ये जो तस्वीरें हैं ना, दो अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है। यानी इसमें एक तरफ मेरा शौक़,

दीवानगी, चाहत, जिद जिसे हम कहते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी हया, शर्म, संकोच, लज्जा, दोनों मिलकर इस मोहब्बत को मुकम्मल बनाती है। चलिए इसी बात पे जावेद अख्तर साहब के दो बैक टू बैक लिखे गाने आपके लिए पेशे खिदमत है। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।
4: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
5: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
4: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
5: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
4: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
5: म्यूजिकली योर्स।
6: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं।
7: प्यार, प्यार अगर थोड़ा सा नटखट ना हो ना तो शायद वो अधूरा सा लगता है। वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और आप सुन रहे हैं हमारा दूसरा सेगमेंट अंदाजे बया। दिल कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है, ना मानता है ना समझता है, बस चाहता है। और राजेश रेड्डी साहब का ये खूबसूरत शेर मुझे यहाँ याद आता है, दिल भी एक जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये दिल कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता जनाब, आखिर दिल बच्चा है जी। और जब किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए तो शायद दिल कुछ यूं कहता है, तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं ना। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक बहुत ही खूबसूरत बात ये है, प्यार और खुशी सिर्फ लाइफ पार्टनर तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी लाइफ में जिनकी खुशी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको खुशी देना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग हमारे पास है, हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन और हमारे आसपास के वो छोटे छोटे रिश्ते जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी खुशी लेकर आते हैं। अगर आपका कोई दोस्त किसी परेशानी से गुजर रहा हो, थोड़ी सी टेंशन में हो, आप उसके पास जाइए, उसके पास बैठिए, पूछिए कैसा है तू, क्या परेशानी है, उसे थोड़ा सा हंसाइए। हो सकता है कि उसकी परेशानी पूरी तरह ख़त्म ना हो, लेकिन अगर आपकी वजह से उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान आ गई ना, तो यकीन मानिए वो खुशी आप भी अंदर से महसूस करेंगे। और अब बात करें हमारे घर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, उनकी एक हंसी, उनकी एक शरारत और पूरा घर जैसे खुशियों से भर जाता है। और हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना, बच्चे खुश रहे बस यही हमारी खुशी है। और कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर सड़क पर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उन्हें देख लीजिए। होता यह है कि कभी कोई उनको खाना डाल कर जाता है तो कोई कभी नहीं डाल कर जाता। आप एक दिन उनके लिए थोड़ा सा खाना रख दीजिए, उनके चेहरे उनकी आँखों में देखिएगा, एक प्यारी सी पॉजिटिविटी आपको दिखेगी आपके लिए। शायद उस पल में किसी की ज़िंदगी में आपने बहुत ही छोटा सा काम किया हो, लेकिन आप अपने दिल में जो खुशी महसूस करेंगे ना, वो बहुत बड़ी होगी। तो प्यार सिर्फ किसी एक इंसान से जुड़ने का नाम नहीं है, प्यार वो एहसास है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान देकर हमारे अपने दिल को भी खुश कर देता है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं गुलजार साहब का लिखा ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी इश्किया। स्टे ट्यून ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी

0: मुंबई, कुछ बातें खत्म नहीं होती, बस धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती है। आप सुन रहे थे अंदाज़े बयां, ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और आज की ये महफिल भी कुछ ऐसे ही खूबसूरत लम्हों में सिमटी रही। और वक्त के सफर को गुलजार साहब की ये पंक्तियां कितनी खूबसूरती से बयां करती है। वक्त रहता नहीं कहीं टिक टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक टिक कर, आदतें इसकी भी आदमी जैसी है। बिल्कुल, वक्त सच में रुकता नहीं। अभी कुछ ही देर पहले तो हमने अंदाज़े बयां की इस महफिल की शुरुआत की थी, और देखते ही देखते इस खूबसूरत सफ़र में हम आखिरी पड़ाव पर आ गए। और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। सभी हमारे लिसनर्स बहुत ही प्यारे हैं। राजेंद्र परमार जी हमसे जुड़े हैं, हर्षदा जी हमारे से जर्मनी से जुड़ी है, क्या बात है, बाबा हैं दादर से, दीपा पालकर जी हैं, बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में आप सभी का फेवरेट आर हम और तुम स्टार्ट होने वाला है। जहाँ होंगे हम और तुम, यानी वही गाने जो आपका दिल चाहे, वही वो वाले गाने प्ले होंगे। और हाँ, दिल से याद आया, हमारे लिसनर्स हमें दिल से अपना प्यार बरसाते हैं, थैंक यू सो मच। तो जाते जाते उन सभी प्यारे लिसनर्स के नाम मैंने लिए थे अभी, और अब आपके लिए प्ले होगा गुलजार साहब का लिखा ये गाना। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और प्रादेशिक समाचार के बाद हम मिलेंगे हम तुम में। स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक टू एफ एम रेमबो ओनली ऑन 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स। और अब वक्त हो चला है आप सभी के फेवरेट आर जिसका नाम है हम और तुम। और इस आर में होते हैं केवल आप और हम, यानी हम तुम, और वही गाने जो आपका दिल चाहे। और अपना गाना सुनने के लिए, अपना मनपसंद गाना सुनने के लिए जो आपके दिल और मन में हमेशा प्ले होता रहता है, उसके लिए आप हमें मैसेज करिए हमारे नंबर 8657661071 पर। अपनी रिक्वेस्ट हमें बताइए, कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। दोबारा मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8657661071 पे आप हमें हमारे साथ जुड़िए और अपनी रिक्वेस्ट बताइए। फिलहाल मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ कहो ना प्यार है फिल्म से ये गाना, और इस गाने के बाद केवल आपकी फरमाइश। स्टे ट्यून और 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

वेलकम बैक टू एफएम रेनबो, ओनली ऑन 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। कहो ना प्यार है फिल्म से ये गाना हमने सुना, बहुत बड़ी हिट रही थी। कहो ना प्यार है, हम सभी को मालूम है, ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी एज एन लीड एक्टर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फिल्म रीमेक थी, विश्वास नहीं होगा ना, बट इट इज रीमेक या इंस्पायर। 1986 में एक फिल्म आई थी, कन्नड़ा फिल्म या मलयालम फिल्म, ये मुझे याद नहीं, कन्नड़ा फिल्म आई थिंक। उस फिल्म का नाम है रथ सप्तमी। साउथ के सुपरस्टार, मलयालम सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा के स्टार पुनीत राजकुमार, सॉरी शिवा राजकुमार थे उस फिल्म में। और उस फिल्म का सेम प्लॉट है जो कहो ना प्यार है का है। दो लड़का लड़की मिलते हैं, लड़के को बहुत बड़ा सिंगर बनना होता है और दोनों को प्यार हो जाता है। बाद में उस लड़के की डेथ हो जाती है, फिर उसी की शक्ल का सेम लड़का उस लड़की को मिलता है। सेम टू सेम इसकी यही कहानी है। और 1986 के बाद 1996 में रथ सप्तमी को भी रीमेक किया गया था प्रभु देवा की फिल्म लव बर्ड्स में। लव बर्ड्स नाम से एक फिल्म आई थी, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी पर बेस्ड थी। मालूम नहीं था ना ट्रिविया। चलिए आज की हम पहली रिक्वेस्ट प्ले करें। पहली रिक्वेस्ट आज की मैं प्ले कर रहा हूँ प्रकाश शिंदे जी की। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है अरिजीत की आवाज़ में राज रीबूट फिल्म से ये गाना। इसके बाद हम प्ले करेंगे चेतन कुमार जी की रिक्वेस्ट, और इन्होंने हमसे प्ले करा है मैंने प्यार किया से, माफ़ कीजिएगा, रिक्वेस्ट किया है इन्होंने हमसे मैंने प्यार किया से दिल दीवाना, SP बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज़ में। स्टे ट्यून और 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं हम तुम ओनली ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स और मैं हूं आपका नया रेडियो मित्र साकेत आपके साथ। अगली रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे विजेंद्र जी की। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है फिल्म जोड़ी नंबर 1 से कुमार सानू एंड सोनू निगम, दो पावर हाउस इंडियन सिनेमा के, तो पावर हाउस सिंगर, इनकी आवाज़ में ये वाला गाना तेरा मेरा दोस्ताना। इसके बाद हम प्ले करेंगे अजय सखारे जी की रिक्वेस्ट। इंदौर से इनकी रिक्वेस्ट आई है और इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ में जब तक है जान फिल्म से सांस। स्टे ट्यून ऑन 107.1 FM म्यूजिकली योर्स। ये दो बैक टू बैक गाने एंजॉय करिए।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

कहते हैं ना, गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, गाने महसूस किए जाते हैं, और जब वो गाना आपकी फरमाइश पर प्ले हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वेलकम बैक टू हम तुम, ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स। और मेरे प्यारे लिसनर्स, आज आपकी फरमाइश ने शाम को और खूबसूरत बना दिया है। चलिए अगली दो फरमाइशों की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे हर्षदा जी की, जर्मनी से इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है साइबो फ्रॉम द मूवी शोर इन द सिटी। श्रेया घोषाल और तोशी रैना की आवाज़ आप इसमें सुनेंगे। इसके बाद हम प्ले करेंगे प्रिया जी की रिक्वेस्ट छत्तीसगढ़ से, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग। ओके, यू से इट, वी प्ले इट। बने रहिए हमारे साथ, स्टे ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: मुंबई शामें तभी खूबसूरत लगती है जब उनमें आपके पसंद के गीत घुल मिल जाए। और हम तुम में आपका स्वागत है ओनली ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स। और बहुत सारे लिसनर्स लगातार व्हाट्सएप पे हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे मुकेश वालिया जी की, देहरादून से। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है बचना ए हसीनों फिल्म से जोगी माही। और इसके बाद हम प्ले करेंगे पंकज मोहिड़े जी की रिक्वेस्ट, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है विशाल शेखर की आवाज़ में, सलीम मर्चेंट की आवाज़ में, और साथ में नीति मोहन भी तो है, इश्क वाला लव फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टे ट्यून्ड ऑन 107.1 एफएम म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
1: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
0: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।
5: दम दम उड़ती है।
6: हर शाम की तरह आज की ये खूबसूरत शाम भी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई, और सच कहूँ तो हम तुम में आपकी फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को और भी ख़ास बना दिया। बहुत सारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट हमारे पास आई, बहुत हम प्ले कर पाए, और जिनकी रिक्वेस्ट आज पूरी नहीं हो पाई, हम प्ले नहीं कर पाए, उसके लिए एक छोटी सी माफ़ी। कोशिश पूरी थी लेकिन वक्त की अपनी एक सीमा होती है। अगली बार पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट प्ले की जाए। और हाँ, अब अपने रेडियो मित्र साकेत को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। और आज की आखिरी रिक्वेस्ट मैं प्ले कर रहा हूँ राकेश माथुर जी की, एंड दिस इज़ साकेत साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून ऑन FM रेनबो 107.1 FM, म्यूजिकली योर्स।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली फॉर द स्पेशल प्रोग्राम चीयर भारत ऑन द 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। कृपया प्रतीक्षा करें, इसके बाद होंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
0: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
1: बिल्कुल, इसका काफ़ी फायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापानीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं

0: है कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है. आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे. तो जापनीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है. उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं.
1: अच्छा.
0: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे. साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से. तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं. सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था. उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही. सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला. सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं. आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं. उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए. तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपेरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं.
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है. इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं. वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी. ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे. लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है. जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एलए ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है. तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन्ड प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी. पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है. मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं. तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं. और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं.
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सरिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
0: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है. एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है. एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं. इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं. बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं. तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 केजी में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफ़ी अच्छा. 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है. तो बहुत

0: अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
2: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे, अभिषेक इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
2: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए, एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी हैं, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
0: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत

0: ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
2: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में LA क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
2: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा LA ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें LA ओलंपिक्स से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि 2-3 है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
0: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगास 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
2: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। अब पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी

0: कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल। तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। और वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है। उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेन्स टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेलवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का, उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के एक रजत समेत 5 पदक जीते थे। इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैम्पियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता हो। जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो, तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैम्पियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है, और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी, और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 kg में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की। टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेन्स टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी, और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफी अच्छा टीम परफॉर्म

0: करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है।
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो, आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ
1: जी। और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में है। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता ही सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके

0: आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आ गई हूँ मैं, क्योंकि समय हो गया है हमारे प्रोग्राम गजरों की दुनिया रंगे महफिल का। रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी का FM रेनबो और स्टूडियो में मैं प्रज्ञा तिवारी। आइए गजलों को सुनते हैं, समझते हैं, गुनते हैं। आप लोगों के लिए पंकज उदास साहब।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

कहते हैं गज़लें सिर्फ अल्फाजों का हुनर नहीं होती, ये वो खामोश जज्बात हैं जो दिल से निकल के कलम से होते हुए आपकी हमारी रूह को छू जाते हैं। ऐसे ही ये गज़ल अभी आपने सुनी, ऐसे ही ये गज़ल आपके पेश नज़र, आवाज़ हरिहरन की।

और वो समय जब घड़ी हमें कह रही है कि हम आपसे ले इजाज़त, पर आपको रेनबो से जाने की इजाज़त नहीं है। खूबसूरत म्यूजिक का दौर यहाँ भी जारी रहेगा, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM पर। मुझसे आपकी फिर होगी मुलाकात, फिर होगी 30 तारीख को रात 9 बजे बाद। तब तक आप गुनगुनाते रहिए जिंदगी की यूजुअली जानी पहचानी पर कभी कभी अजनबी हो जाने वाली धुनों पर। प्रज्ञा तिवारी की तरफ से बाय बाय।

रात्रि के 12 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनिवार्य दायरे में शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमा करने को मंजूरी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में गैर लाभकारी और शैक्षणिक संगठन द आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। तमिलनाडु में AIADM के विधायकों मरगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला T20 रैंकिंग जारी कर दी है। श्री चरणी T20 रैंकिंग में 800 रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये थी अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शोज। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये साहब ने मुझे रिहर्सल के लिए बोला, मैं आता हूँ। जब उन्होंने गाने की रिहर्सल दी तो मैं चुप हो गई। मैंने बोला, बाप रे ये कैसे होगा अब मुझसे, क्योंकि उस चीज़ की आदत ही नहीं थी हमको। उन्होंने कहा, रिहर्सल की जगह अगर नहीं होता तो बदल देता हूँ। उन्होंने कहा बदल देता हूँ, और मेरे एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बदल देना ये हमारे स्वभाव में नहीं है कि कोई कहे कि आप गाइए और हम गा नहीं सकते हैं तो हम प्लेबैक सिंगर काहे के। मैंने कहा, नहीं मैं गाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं 15 दिन रिहर्सल करूंगी। और मैं वो गाना गाने के लिए गई, और वाकई उस गाने के बाद मुझे 100 का नोट हाथ पे रख के आर डी बर्मन साहब ने कहा कि वाह क्या गाया आपने।

एक बजा है, समय है एफएम रेनबो मुख्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। सेमी कंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से एक महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खादन नीलामी का 16वां दौर आयोजित करेगा। 16वें दौर में पूरी तरह और आंशिक रूप से खोजे गए कोयला खंड शामिल होंगे। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित CBFC में 18 सदस्य शामिल हैं। असम में नागांव संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 7:00 PM शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। एक बजकर 3 मिनट और 7 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: सगरे गाँव की गोरिया। पुछू पुछू
1: मैं छोड़ रहा।

0: इसीलिए तो कहता हूं
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो
0: बाकी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। सेमी कंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत ने यथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। केंद्र सरकार आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना मुक्ति दिवस का आयोजन करेगी। यह दिवस हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय होने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति पर मनाया जाता है। असम में नागांव संसदीय क्षेत्र उपचुनाव के लिए कुल 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच 7 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

पानी रात्रि के 2:03 और 06 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: प्यार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा, एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुरा बोला, गा
1: एक चतुर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

आधी रात के 3 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने

तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। दिग्गज कन्नई अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 3:03 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है मिडनाइट मेलोडीज शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड के हिट गाने। तो शुरू करते हैं गानों की इस लड़ी के साथ और ऐसे ही गानों का नॉनस्टॉप मजा लेते रहिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की

0: वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

भारत में चीतों की आबादी बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें देश में जन्मे 32 चीते शामिल हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की 4 वर्ष की स्थिति समीक्षा से यह जानकारी सामने आई है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वे शनिवार तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका ने 2 दशक से अधिक समय बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में इसकी घोषणा की गई है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3रा और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल। टाइम हुआ है सुबह के 4:03 और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने सारेगामा शो में, जिसमें आप सॉफ्टली गानों का मजा लेंगे और कुछ थोड़े से पैपी टाइप के गाने होंगे। तो इन दोनों टाइप के मिक्स गानों का मजा लीजिए नॉनस्टॉप एक के बाद एक। तो अभी शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान जुबिन नौटियाल की आवाज में इस गाने के साथ। तो इस गाने के साथ ही गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।